0: गोली चांज जरा साकर चीजरा लूटीं जू
1: यही लंबर सदन बा काना चीजे लोटो जो
0: बेचे लोटो
1: बेचे लोटो रिंची
2: सिंकेन बच्चों कुंखाम्सा दादा ने बेचे लोंचन जिंचे लेकों कांगी लोंचन जे बेचे लोटो क्यों जुटे चुरी ह्याम ला बु रंग जो मेंट का नब्रे का जी हम जो सोए जंबे नवे बेचे लोटो ला ये जाने बु मेटा लू दावा ये बु दाबी ता जाके चिप्पियों को अंगूठे दोड़ी चेष्टारी लोसा हिरंगनी
3: रे रे रे टिंको वे चिरा रा ये टिंबा जोकर सगी न्यावा यंगों एंजो लंग चम जाती यार था चौमो लोडा चुंवा चेचु नमलं युजे अचंगानी रंगडी उठो यार सो कांचन दर्ले नाचे दांग शंख्या सकते चेदुंग गोचु चिंदे जंबर युमा Cicu, nampaknya juga ngaji ngani rendi u top zone tapi ada iba ke u tunggu cuci nga. Dini kancing dah lezat, puker kancing tu ina dah lumban dah lepas lezat. Dini dah naji dah sengsir ke sakuk kasi lada, rendi cedui nang gua cuci nga. Dengan jinde ke jumpa tu iela, yama jaj zelen rado, lu jaj zelen rado, cutong jaj zelen rado, tegi kelekaya mu zogui zekeng nga. Dini jo kuker zat